0: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी सकाळचे 6 वाजत आहेत. ठीक 6 वाजता हिंदी समाचार दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होते. आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत काही क्षणातच.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार. अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा. 2 दिन के सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं. इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं. इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है. शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान हिस्सा लेंगे. संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रुसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे. इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है. श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं.

0: इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपद, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आम्ही आकाशवाणीच्या बीड केंद्रावरून बोलत आहोत। सध्या सकाळचे ठीक 6:05 झाले आहेत। प्रसारित मंगल प्रभात हा भक्तिगीतांचा कार्यक्रम। कार्यक्रमात श्रोते ऐकूयात देवी उपासनी महाराज यांनी सादर केलेलं देवी सप्तशती स्तुती स्तोत्र।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में

0: मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, CII और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
2: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय, आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
2: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तेलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण आज मुंबई में सम्पन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: 4 दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, SEBI के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी ने एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं।

0: अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। यह बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
3: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करती है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनमथिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनमथिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है बढ़ता दायरा बदलता

0: विश्व अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोक सत्य लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा, कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. 18th BRICS summit to begin at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. Russian President Vladimir Putin arrives in New Delhi to attend the summit. IMF describes India a key engine of global growth after the country's economy expanded 7.8% in first quarter of current fiscal. Trump administration proposes scrapping 60-day grace period for laid-off H-1B workers in US. National Testing Agency releases provisional answer keys for retest of English, Commerce and Sociology papers of UGC NET June 2026. And in cricket, India beat Bangladesh by 40 runs in first semi-final of Women's Asia Cup 2026 in Dubai. And the news in detail. The 18th BRICS summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The theme of India's chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will participate in the summit. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Saudi Arabia's Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, will also participate in the summit. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung are the other heads of state who will attend the summit. United Nations Secretary General Antonio Guterres, Director General of WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, and President of New Development Bank Dilma Rousseff are among the heads of international organizations who will participate in the event. Prime Minister Narendra Modi is likely to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin today. The President of Russia and Foreign Minister of Brazil arrived in the national capital last night to participate in the summit. The President of South Africa is set to arrive this morning. Presidents of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of Abu Dhabi and Prime Ministers of Malaysia and Ethiopia are scheduled to arrive later today. Prime Minister Narendra Modi will have a series of bilateral meetings on the sidelines of the summit. We have a report.
3: The grouping was formalized during the BRIC foreign ministers meeting held on the margins of the United Nations General Assembly.

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह का गाया ये गीत फिल्म मिकी वायरस से, गीत और संगीत हनीफ शेख का।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आज महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, विचारक और भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे की जयंती है। 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गागोड़े गांव में जन्मे विनोबा भावे महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने अपना जीवन सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और समाज के सेवा के लिए समर्पित कर दिया। भूदान आंदोलन के माध्यम से उन्होंने भूमिहीन लोगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनूठा प्रयास किया। सादगी, त्याग और मानव कल्याण पर आधारित उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा और प्रेरणा देते हैं।

टेबल नंबर 21। इस फिल्म का गीत आपने सुना गजेंद्र वर्मा की आवाज में। असीम अहमद अब्बासी ने इसे लिखा था, गजेंद्र वर्मा का संगीत। और अब चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। विविध भारती से आइए अब आपको सुनवाते हैं नौटंकी साला। इस फिल्म का गीत आयुष्मान खुराना और नीति मोहन की आवाजों में, रोचक कोहली, गुरप्रीत सैनी और आयुष्मान खुराना ने इसे लिखा है। संगीत है रोचक कोहली और आयुष्मान खुराना का।

0: लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: काई पोचे, इस फिल्म का गीत सुनिए अमित त्रिवेदी की आवाज में। स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा है, अमित त्रिवेदी का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं ये जवानी है दीवानी। इस फिल्म का गीत तुझी रहना रेखा भारद्वाज की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसके बोल लिखे हैं, प्रीतम का संगीत।

ये जवानी है दीवानी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए नेहा अगरकर देसाई को आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

पांच बातें उनकी जो दिल की उड़ान को आंखों में भरकर जीते हैं, जिन्हें प्यार है अपनी कला से, और जो फिल्मों में अदाकारी नहीं करते बल्कि उन्हें जीते हैं।

आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय पुरस्कार तो अभी मिला है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें जो यात्रा तय करनी पड़ी उसकी बात करना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ में 14 सितंबर 1984 के दिन सुरीली किलकारी गूंजी निशांत खुराना की, और बाद में माता पिता ने उन्हें नया नाम दिया आयुष्मान।

छोटी उम्र से ही आयुष्मान ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्हें गाना बहुत पसंद था। अपनी गिटार के साथ वो कहीं खो जाया करते और सुनने वाले उनके कायल हो जाते। वो अपने गाने भी खुद ही लिखा करते। ऐसे में कई बार आसपास के लोगों को लगता कि आयुष्मान गायक या गीतकार ही बनेंगे, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही उन्हें एक नई राह दिखी। वो जुड़ गए थिएटर।

उन्होंने कई नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई है। धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधायुग के मंचन में उन्होंने अभिमन्यु का किरदार निभाया था। 5 साल थिएटर को देने वाले आयुष्मान चंडीगढ़ के मशहूर थिएटर ग्रुप आगास और मंचन तंत्र की नींव रखने वालों में से एक माने जाते हैं। लेकिन थिएटर उनकी मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक रास्ता था।

साल की उम्र में उन्होंने एक पॉप रियलिटी शो में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने काफी काम किया, जैसे वो एक चर्चित एफएम में आरजे का काम करने लगे। उनका शो मान न मान मैं तेरा आयुष्मान काफी पसंद किया जाता। देखते ही देखते वो एक बहुचर्चित टीवी रियलिटी शो में आ गए और उन्होंने उस शो को जीत भी लिया। इसी चैनल में उन्हें काम मिल गया वीडियो जॉकी का। आयुष्मान आवाज की दुनिया से निकलकर सबके सामने आ चुके थे और उन्हें लोग काफी पसंद करते थे।

की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक रोज यूं ही रोड से जाते हुए आयुष्मान ने देखा किनारे बड़ी सी होर्डिंग में उनके फेवरेट स्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ओम शांति ओम का पोस्टर लगा है। यूं ही उनके मन में ख्याल आया कि एक रोज मेरी फिल्म की होर्डिंग भी यही लगेगी। ये खुली आँखों का सपना था और ये सपना सच हुआ जब 2012 में उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी विकी डोनर।

गीत फिल्म के लिए सिलेक्ट होते ही पहले ही मीटिंग में आयुष्मान ने विकी डोनर फिल्म से पहली बार प्रोड्यूसर बने जॉन अब्राहम को गाकर सुनाया और जॉन ने इस गाने को फिल्म में आयुष्मान की आवाज में ही रखने का फैसला किया। इस फिल्म और गीत दोनों के लिए ही आयुष्मान को बहुचर्चित फिल्म पुरस्कार मिला। विकी डोनर लीक से हटकर फिल्म थी जिसमें एक सामाजिक मुद्दे को सरल तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई थी। इसी तरह चुप्पी रखे जाने वाले एक और विषय पर आयुष्मान ने बेहतरीन किरदार निभाया। ये फिल्म थी शुभ मंगल सावधान।

आयुष्मान की फिल्मों की संख्या दहाई में है, लेकिन उनके किरदार शतक जमाते हैं। ऐसे चुन चुन के किरदार उन्होंने लिए हैं कि अलग ही रंग नजर आता है, उनका थिएटर का अनुभव नजर आता है एक थिएटर कलाकार की भूमिका में। ये फिल्म थी नौटंकी साला।

एक किताब को किसी और के नाम से छपवाने वाले और उस किताब के लेखक से प्यार करती बिट्टी को ये बात बताने को बेताब चिराग दुबे के किरदार में जान भर देते हैं आयुष्मान फिल्म बरेली की बर्फी में।

सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को जीता उनके किरदार प्रेम प्रकाश तिवारी ने, जो अरेंज मैरिज से पत्नी बनी संध्या को स्वीकारने में बहुत देर लगाते हैं। ये कहानी तो मानो हर आम इंसान को छू गई। आयुष्मान का ये किरदार जिस फिल्म में नजर आया वो फिल्म थी दम लगा के हईशा।

आयुष्मान खुराना की बात हो तो उनके बिल्कुल अलग किरदारों की बात न की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी तीसरी ही फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया शिवकर बापूजी तलपड़े का, जो भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत का पहला विमान बनाया था, लेकिन वो गुमनाम ही रहे। इस किरदार को निभाने के लिए आयुष्मान ने अपना वजन गिराया और मराठी भी सीखी। ये फिल्म थी हवाई ज्यादा।

दिवस के दिन जन्मे आयुष्मान को हिंदी से बड़ा लगाव है और उसका कारण है उनकी माँ जो हिंदी में एमए है। बचपन से ही आयुष्मान को भाषा से लगाव रहा। वो न सिर्फ अच्छा साहित्य पढ़ा करते बल्कि वो बहुत ही छोटी उम्र से ही लेखन की ओर भी मुड़ गए थे। यही नहीं, उनका एक ब्लॉग भी है जिसे वो हिंदी में लिखते हैं और आज भी जब भी उन्हें समय मिलता है कोई ना कोई कविता शेर वगैरह उसमें जोड़ते रहते हैं। भाषा से लगाव का आलम तो ये है कि आर्टिकल 15 के शूट के दौरान जब वो कुछ समय के लिए लखनऊ में थे तो उन्होंने उर्दू सीखना शुरू कर दिया था। दरअसल उन्हें लगता है कि इससे उनके लेखन में उन्हें काफी मदद मिल सकती है। जहां बात हो रही है आयुष्मान के शौक की, तो यहां कुछ बातें बताने से हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। जैसा कि आपको पता ही है कि आयुष्मान को गाने का शौक है, लेकिन कई बार उन्होंने गाने के जरिए अपनी छुट्टियों का खर्च भी निकाला है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कॉलेज के दिनों में वो दिल्ली से मुंबई के लिए चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस में अपने दोस्तों के साथ चढ़

करते और हर कोच में जाकर गाने गाकर परफॉर्म करते। खुश होकर यात्री उन्हें पैसे दे देते और इतने पैसे इकट्ठा हो जाते कि वो सभी दोस्त मिलकर गोवा की ट्रिप के खर्चे निकाल लेते।

गाने थिएटर जैसी चीजों में आयुष्मान का मन लगता था, वहीं वो पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। आयुष्मान ने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री और मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। पढ़ाई के कारण ही तो उन्हें अपनी पत्नी ताहिरा मिली। जी हाँ, ताहिरा आयुष्मान के बचपन के साथी रही हैं। दोनों फिजिक्स के ट्यूशन में साथ पढ़ा करते थे। यहाँ दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी। ताहिरा आयुष्मान के करियर के उतार चढ़ाव में उनके साथी रही और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती रही।

आयुष्मान की फिल्म आर्टिकल 15 उनकी एक बहुचर्चित फिल्म रही। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और इस किरदार के लिए उन्हें काफी सराहना मिली। ये फिल्म सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखती है। इस किरदार के जरिए उन्हें गंभीर भूमिका निभाने में माहिर मान लिया गया है। यूं तो हर भूमिका में आयुष्मान ऐसे ढल जाते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं, लेकिन 2018 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने लोगों के मन को जीत लिया। आयुष्मान ने इस फिल्म के लिए पियानो बजाना सीखा और ब्लाइंड पियानिस्ट से मुलाकातें भी की। उनकी इस तैयारी ने उनके किरदार में जान फूंक दी। उन्होंने इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया। जी हाँ, बात हो रही है फिल्म अंधाधुन की।

बता रे। आयुष्मान इसी तरह अलग अलग किरदारों में ढलकर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाते रहे, इस कामना के साथ विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं।

आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था युवा अभिनेता आयुष्मान खुराना पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
3: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत
1: श्रोत गाता रहे या कार्यक्रम ऐकूयात रिफ्यूजी या चित्रपटातील सोनू निगम आणि सहकाऱ्यांच्या सुरात जावेद अख्तर यांची गीतरचना संगीत अन्नू मलिक यांचं.
0: मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी. मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा.
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी. समझूंगी तुम्हारे होंठों को छूकर.

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत। आप सबका प्रोग्राम है सुरीला सफर और मैं आज सफर में आपके साथ हूँ अनुराधा उपाध्याय। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, जिनमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो ये पोस्ट इबारत हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं और आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं, प्यार भरे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से शब्द आपने चुने हैं, कौन से गीतों की लिस्ट बनाई है और वो गीत हमारे लिस्ट से मैच करते हैं कि नहीं मैच करते हैं। और साथ ही अगर नहीं भी मेल खाते तो भी आप वहाँ पर अपने पसंदीदा गीत इन शब्दों से चुने हुए लिख सकते हैं, हो सकता है हम इस प्रोग्राम में उन्हें शामिल कर लें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की बिना देरी के, लेकिन एक बार इबारत फिर से पढ़ देते हैं ताकि जिन लोगों ने लेट ट्यून इन किया है, हमारे साथ लेट जुड़े हैं, वो भी अपने संदेश हम तक पहुंचा सके। इबारत कुछ इस प्रकार है, तुम्हारे लिए इन पलकों पर मैंने ख्वाब शाम से सजाए हैं, मेरे मन को छूकर तुमने अरमान जगाए हैं, खिले गुंचे हवाओं में खुशबू सी है, गा रही ये जमीं मौसम के इशारे हैं, सोचती हूँ कह दूँ या चुप रहूँ, दिल की बात जुबां तक लाऊं या नहीं, तुम सामने हो तो लगता है इससे खूबसूरत कोई पल है ही नहीं, तुम मुस्कुराता हुआ चांद मेरा, मेरी एक मुस्कान के आगे, तेरी एक मुस्कान के आगे फीका लगे ये संसार सारा। जी हाँ, ये थी इबारत। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की इस गीत के साथ। साथ ही साथ आपके संदेश हम तक पहुंच गए हैं, वो हम लेते हैं इस गीत के बाद।

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लहू के दुरंग फिल्म का नाम, फारूक कैसर ने इसे लिखा और बापी लहरी का संगीत, और मुस्कुराते हुए हमने आज के इस प्रोग्राम का आगाज किया। आपके संदेश भी मुझ तक पहुंच चुके हैं और खासकर इस मुस्कुराते हुए गीत के लिए बहुत से मैसेजेस आए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीले सफर में महबूब और महबूबा की बातें होंगी, जहां एक दूसरे का बखान करते नहीं थकते हैं। उनके चेहरे पर वो दिलकशी है कि एक

मिनट भी वे एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और एक दूसरे को निहारते हुए गुफ्तगू करते हैं, इसी बारे में कुछ कहा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत इबारत है और इसमें प्रेमी मन की उस उधेड़बुन और समर्पण को दर्शाया गया है, जहाँ एक तरफ आंखों में सजे ख्वाब और दिल में जगते अरमान है, तो दूसरी तरफ ये संकोच भी है कि दिल की बात जुबां पर लाऊं या नहीं। हमारी श्रोता कहती है कि ये जो प्यार का एहसास है उसे महसूस करते हुए उस सुंदर पल की याद में वो खो गई हैं और प्यारी सी मुस्कान के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। बिल्कुल, एक और श्रोता कहते हैं कि इससे खूबसूरत पल और कोई हो ही नहीं सकता कि मुस्कुराते हुए चांद को सामने देखना। अब वो चांद आसमान में है या फिर आपके सामने बैठा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में कुछ ऐसा ही मीठी सी मोहब्बत और खूबसूरत एहसासों से भरा हुआ है, कुछ ऐसा लगता है जहाँ पर ख्वाब भी हैं जो ख्वाब जगा देते हैं। जी हाँ, एक श्रोता ने कुछ बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लिखकर भेजी है कि पलकों पर कुछ शामें ठहरी थी, उनमें तुम्हारे आने की खुशबू थी, तुम आए तो हवा ने धीरे से करवट ली और मौसम ने जैसे कोई राज कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारे से संदेश के लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये कविता रूपी इबारत जो है प्रेम के आरंभिक एहसास, मौन आकर्षण और प्रियतम के प्रति संपूर्ण समर्पण की कोमल अभिव्यक्ति है। और उन्होंने बहुत से गीत भी लिखे हैं जो उन्हें लगता है कि ये जरूर आज प्ले होंगे, देखते हैं। तो आप लोग समझ तो गए होंगे कि आज की ये जो इबारत है इसमें कहीं ना कहीं मुस्कान, मुस्कुराहट और किसी की खुशबू है। जी हाँ, और हम किसी और की मुस्कुराहट के पीछे तो मरते ही हैं, लेकिन साथ ही ये भी है कि आपका अपना चेहरा जो मुस्कुराता है, खिलता है, वो हर किसी को अच्छा लगता है। तो क्यों ना इसके बारे में बात की जाए कि ये जो हंसता मुस्कुराता चेहरा है, वो जो मन को लुभाता है, उसके लिए आप क्या करते हैं? अपने मुस्कान के लिए, अपने चेहरे के लिए क्या करते हैं इस खुशी को बरकरार रखने के लिए? मुझसे साझा कीजिए अपने संदेश और बहुत अच्छा लगेगा उन संदेशों को पढ़कर। फिलहाल चलते हैं अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हरजाई फिल्म से, निदा फासली ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का संगीत। प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं, उनमें से एक संदेश जो है हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनकी धर्मपत्नी ने कहा सुबह उनसे कि आपके लिए इन पलकों पर मैंने ख्वाब सजाए हैं, कल शाम से सजाए हैं, और उन्होंने पूछा क्यों, तो जवाब आया कि गणपति बप्पा आने वाले हैं, पधारने वाले हैं, तो उसकी तैयारी करनी है, और ये अपनी अदरक इलायची वाली चाय का आनंद लेते हुए, साथ ही थोड़ा बहुत साफ सफाई का कार्यक्रम जारी रखते हुए इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्यार और विश्वास जीवन में बना रहना चाहिए ताकि मिठास बनी रहे, जिसके आने के एहसास से ही मन में उमंगे उठने लगे, मन प्रफुल्लित हो जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, हवाओं में घुली खुशबू, खिलती कलियां और मुस्कुराता मौसम सब तुम्हारे आने का ही इशारा है। तुम मेरा वो चमकता चांद हो जिसकी एक मुस्कान के आगे ये पूरा संसार फीका लगता है। अरे वाह, आपने तो एक इबारत, नई इबारत ही लिख दी इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए, बहुत खूब। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सकारात्मक सोच रखते हैं जिससे मन खुश होता है और फिर अपने आप ही चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट छाई रहती है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो वो चेहरे पर भी दिखती है और हमारे लिए तन मन दोनों तरीके से बहुत अच्छी होती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराता हुआ और प्यार से भरा चेहरा केवल शारीरिक सुंदरता का प्रतीक नहीं होता, बल्कि ये इंसान के भीतरी सौंदर्य, करुणा और ऊर्जा का आईना होता है। साहित्य ने चेहरे की मुस्कान और आंखों में छिपे प्यार को

ईश्वर का सबसे खूबसूरत वरदान माना गया है, जो बिना कुछ बोले भी सामने वाले का दिल जीत लेता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराता हुआ और प्यार से भरा चेहरा एक ऐसा शस्त्र है जो नफरत की आंधियों को शांत कर सकता है। ये इंसानियत की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है और आज के तनावपूर्ण युग में जहां हर कोई किसी न किसी दौड़ में व्यस्त है, ऐसे में चेहरा ईश्वर के साक्षात आशीर्वाद की तरह है, जो हमें याद दिलाता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य प्रेम और आनंद ही है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश ये, और साथ ही साथ सकारात्मक सोच तो है ही जो हम अपने आप को खुश करने के लिए रखते हैं, स्वस्थ रखने के लिए रखते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आपको पसंद आती है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। या समझो कि हम कई बार कुछ अच्छा गाना सुन रहे होते हैं, वो गाना सुनते सुनते कहीं ना कहीं होठों पर खिली मुस्कान एकदम आँखों की चमक बन जाती है। तो ऐसी कोई बातें, या हाल फिलहाल आप कहीं घूम के आए हों जिसने आपको रिफ़्रेश कर दिया हो, इस तरह के अनुभव भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। फिलहाल आपको सुनवाती हूँ ये अगला गीत, और साथ ही साथ इस गीत के अभिनेता, यानी कि ये गीत कौन से अभिनेता पर फिल्माया गया है, ये भी मुझे बताएं।

तराना फिल्म से ये गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। रविंद्र रावल ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत। सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि ये कौन से अभिनेता पे फिल्माया गया है, जी हाँ बिल्कुल, मिथुन चक्रवर्ती पर ये फिल्माया गया है और बहुत से सही जवाब हमें मिले हैं, साथ ही आपके संदेश मिले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि छह गीतों की इबारत में से चौथे नंबर पर लिखा ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें अच्छा लग रहा है। जी हाँ धन्यवाद। गुंजे लगे हैं कहने, ये गीत बहुत ही प्यारा है, हमने सोचा था लिखेंगे पर भूल गए, कोई बात नहीं ये गीत शामिल हो चुका है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में किसी भी वजह से चेहरे पर मुस्कान आए, दिल को सुकून मिले और रिश्तों में प्यार बना रहे। नफरतें तो बहुत है दुनिया में, हम क्यों ना थोड़ा सा प्यार बांटें। जी हाँ बिल्कुल।

0: साथी श्रोता लिखते हैं कि दिल की बात कहें या ना कहें, ये हमेशा एक असमंजस छाया रहता है, क्योंकि कहने से कई बार रिश्ते खराब भी हो जाते हैं और कहने से कई बार वो रिश्ते पार भी हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन शब्दों का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे में। और आप किन से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सब सोचते हुए उसके बाद अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि शब्द एक बार कहे जाएँ तो फिर वापस नहीं लिए जाते हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिख के भेजी है कि तुम्हारे साथ बारिश में भीग जाने का ख्वाब कब से मन में है, तुम समझ सको तो मेरे मौन को समझ लो, तुम्हारी हथेली पर ठहरी बूंदों में से कोई अनकही कहानी पढूं और तुम मेरे मौन को बिना कहे समझ लो। जी हाँ, ये चंद पंक्तियां मैंने पढ़ी है क्योंकि ये एक तरह की इबारत ही लिख डाली है इन्होंने, और मैं चाहूंगी आप अपने अनुभव साझा करें क्योंकि वो अनुभव पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा अच्छा लगेगा सबको जानकर। आप सुन रहे हैं मेरे साथ सुरीला सफर।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है,
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग।

ये सुधास की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे, कैफी आज़मी ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत और टूटे खिलौने फिल्म का नाम। आपको बता दें कि इसी प्रोग्राम में कुछ देर पहले जो आपने गीत सुना तराना फिल्म से, गुंचे लगे हैं कहने, शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में ये गीत और इसे लिखा तिलक राज थापर ने और संगीत राम लक्ष्मण का। आपके संदेशों पर आते हैं और जब मुस्कुराते हुए चेहरे की बात आती है तो आपके संदेश भी मुस्कुरा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है पढ़ते हुए। और हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आज सुरीला सफ़र के गीत मुझे उम्र के उस पड़ाव पर अतीत की खूबसूरत यादों में ले गए और होठों पर बरबस ही मुस्कान आ गई। धन्यवाद विविध भारती, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं कि पिछले महीने अगस्त में वो जम्मू कश्मीर बाबा अमरनाथ जी माता वैष्णो देवी गोल्डन टेंपल अमृतसर के दर्शन करने गए थे और साथ में श्रीनगर भी घूमने गए थे और ये कहीं ना कहीं उन्हें रिफ्रेश कर गया, आनंदित कर गया। जी हाँ, घूमना बीच बीच में वक्त निकालना अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सारे गाने हमारे जवानी के दिनों यानी कि कॉलेज के ज़माने के सुनाए जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और ऐसा लग रहा है मानो जवानी लौट आई है। जी हाँ, इन गीतों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराने की वजह तुम हो विविध भारती, इस परिवार यानी कि विविध भारती परिवार से जो सुकून मिलता है मानो दिल में किसी ने मरहम लगा दिया हो और गीत बजा दिया हो। जी हाँ बिल्कुल, हम चाहेंगे कि मरहम लगाने की ज़रूरत ना पड़े लेकिन हाँ आपके दिल को आनंदित ज़रूर करते रहें। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेहरे अगर हंसमुख होते हैं तो उन्हें देखते ही बस उनसे बात करने का जी चाहता है, किसी न किसी बहाने बस उनसे बात हो जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसे हमारे साथ दिल्ली में हुआ एक ऑफिस में, और एक सेक्रेटरी थी, उन्हें देख के उनका चेहरा देखकर अभी तक नहीं भूले हैं वो, और बस बहुत ही हंसमुख थी और उनका वो चेहरा दिल में उतर आया था। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आप अपने नूरानी चेहरे को हंसते हुए रखने के लिए, मन को झूमता हुआ रखने के लिए क्या करते हैं? इसके अलावा कौन सी आदतें हैं जो आपने अपनाई है अभी रिसेंटली जिससे कहीं ना कहीं दिल प्रफुल्लित हो जाता है, वो ज़रूर लिखकर भेजिए। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

याराना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में राजेश रोशन का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही आसान थी, बहुत जल्दी उन्होंने गीतों की लिस्ट बना ली, फहरिस्त बना ली, लेकिन अभी अभी वो बस किसी काम से खाली हुए हैं, खाना खाने का काम कर रहे थे और अभी किसी और काम की तरफ बढ़ना है। जो उन्होंने लिखा है वो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि खाना खाने के बाद गीत सुनते हुए अब किसी और काम की तरफ बढ़ेंगे। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये एक घंटा यानी कि 60 मिनट VBS टीम के साथ हैं, इस प्रोग्राम में हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता लिखते हैं कि संबंध बनाना यानी कि रिश्तेदारी निभाना बहुत ही रिश्तेदार रखना होता ज़रूर है क्योंकि हमारे साथ रिश्तेदार जुड़े होते हैं, परिवार वाले लोग जुड़े होते हैं, लेकिन इस रिश्ते का निर्वाह करना आसान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कभी किसी को कुछ बुरा लग जाए या किसी को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसमें कहीं ना कहीं असमंजस जरूर हो जाती है क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से पड़ाव आते हैं।

0: ऐसी चीजें होती है, तो ऐसे में बहुत समझदारी से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जीवन का नाम बैलेंस बनाकर चलना है, ये बैलेंस जो है वो जरूर रहना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे जिन्होंने कुछ पंक्तियां लिखकर भेजी है, तुम दो कदम दो साथ अगर आसान हो जाए सफर, छोड़ो भी ये दुनिया का डर, तोड़ो ना दिल इनकार से, देखो कभी तो प्यार होता है। कुछ कुछ उन्होंने लिखा है, हालांकि अच्छा लिखा है, दिल से लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। छूकर मेरे मन को, इस गीत की प्रतीक्षा कब से थी और अब जाकर ये गीत आया है, ऐसा दो से तीन श्रोताओं ने लिखा है जिन्हें इस गीत का इंतजार था, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य अकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकेडमी युवा का।
0: क्या बात है,
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हम किसी से कम नहीं फिल्म से आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ चेहरा किसी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें उस शख्स की मुस्कान सबसे अच्छी लगती है जो बिना किसी स्वार्थ छल या दिखावे के अपने दिल से मुस्कुराता है। जी हाँ, और ये मुस्कान दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान होती है। छोटे बच्चे की मुस्कान भी हमारा मन मोह लेती है और वो भी बड़ी मासूम और किसी स्वार्थ के परे होती है। बिल्कुल सच कहा आपने। बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि उनके बहुत सी गीतों की फहरिस्त पूरी हुई है और प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति से बंधी ये जो इबारत है इसमें बहुत से गीत आसान थे गैस करने बताने, लेकिन सुनने में उतना ही मजा आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि प्यार इंसान के भीतर दया धैर्य और संवेदनाशील को जगाता है जिससे वो जिंदगी को और सकारात्मक नजरिए से देखने लगते हैं। जी हाँ, सकारात्मक दृष्टिकोण होना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्यार जिंदगी का वो हसीन एहसास है जो किसी के करीब होने से ज्यादा उसके ख्याल मात्र से चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके संदेश पढ़कर इस वक्त हमारे चेहरे पर मुस्कान खिल गई है।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है,

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 45वीं कड़ी।

वंदे मातरम और उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर जब विवाद खड़ा हो रहा था, उसी समय वंदे मातरम के संदर्भ में एक असाधारण घटना भारत के बाहर घटी। वो ऐतिहासिक घटना आज भी इतिहास की दृष्टि से बहुत कम लोगों को पता है, और इस घटना के शिल्पकार थे महाराष्ट्र के कुछ

0: देशभक्त खिलाड़ी। ये घटना राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में घटी। ১৯৩৬ में जर्मनी के बर्लिन में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था।
1: Like a modern Caesar, he stands on the balcony to receive the salutes of the athletes of 50 nations.
0: उस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन के लिए अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल नामक संस्था के कसरतबाजों को आमंत्रित किया गया था। उस कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय व्यायाम पद्धति, योग तथा शारीरिक शिक्षा के प्रदर्शन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के समय हुए मार्च पास्ट में भारतीय दल ने अपना ध्वज फहराते समय यूनियन जैक के बजाय तिरंगा ध्वज फहराया था। इतना ही नहीं बल्कि ओलंपिक खेलों के निमित्त हुए कार्यक्रम में भारत के राष्ट्र गीत के रूप में वंदे मातरम गीत गाया था। इस दल का नेतृत्व प्रखर राष्ट्रभक्त डॉक्टर सिद्धनाथ काणे ने किया था।
2: हमारा देश पराधीनता में था, तब विदेश में इन खिलाड़ियों ने अपने तिरंगे झंडे और वंदे मातरम के माध्यम से भारतीयों के स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके सामने उजागर किया। वंदे मातरम के कारण देशभक्ति की भावना सामान्य नागरिकों की तरह ही कलाकारों और खिलाड़ियों में भी पैदा हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले और आज भी व्यायाम के प्रसार का काम निष्ठा से चला रहे 110 साल पुराने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने आज भी वंदे मातरम गायन की परंपरा को आदर के साथ आगे जारी रखा है। ये है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संगीत शिक्षक श्री इंगले द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम गीत के बाद के अंतरों पर आपत्ति जताई गई थी, फिर भी वंदे मातरम शब्द या उसके उद्घोष का किसी ने भी विरोध नहीं किया था। 1941 में मुंबई से गुजराती भाषा में वंदे मातरम नाम का अखबार निकलने लगा तो 1942 के चले जाओ या भारत छोड़ो आंदोलन में तो इस नारे ने आंदोलनकारियों के मन में सबसे सम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया।
1: दूसरे विश्व युद्ध के बादल छाए हुए थे, तब भी आर्थिक मंदी में फंसे अंग्रेजों को भारतीय सेना की मदद तो चाहिए थी, पर उसके बदले स्वतंत्रता देने के लिए वे अनुकूल नहीं थे। चर्चिल जैसा ब्रिटिश प्रधानमंत्री समय समय पर भारत और यहाँ के पूजनीय नेताओं का उल्लेख अपमानजनक तरीके से करता था। इस आंदोलन के दौरान होने वाली हर सभा में वंदे मातरम के नारे सागर की लहरों की तरह उमड़ते थे। अंग्रेजों की गोलीबारी, आंदोलनकारियों की बड़े पैमाने पर धरपकड़, लाठीचार्ज जैसे अंग्रेजों के आतंक के हथकंडे जारी थे। चौथी मद्रास कोस्टल डिफेंस इन्फेंट्री की एक टुकड़ी, जो ब्रिटिश शासित भारतीय सेना की एक टुकड़ी थी, इस टुकड़ी के अंग्रेजों के खिलाफ तोड़फोड़ की योजना में शामिल होने की गुप्त रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ लगी। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। सैन्य पुलिस ने लगभग 10-12 विद्रोहियों को दिनांक 18 अप्रैल 1943 को पकड़कर सैन्य अदालत के सामने

ने खड़ा किया। 6 जुलाई और 5 अगस्त 1943 को बेंगलोर के सेंट एंड्रयूज चर्च में इन आरोपियों की जांच हुई और 9 बंगाली युवा सैनिकों को फांसी दे दी गई। मद्रास की जेल में फांसी के फंदे में गर्दन डालने से पहले उन्होंने वंदे मातरम कहते हुए मातृभूमि का जय जयकार किया। 27 सितंबर को 21 से 25 वर्ष की आयु के ये 9 युवा शहीद हो गए।

0: 1942 के इस काल में महात्मा जी के नेतृत्व में सारा भारत इस अंतिम लड़ाई को मन ही मन निश्चय कर करेंगे या मरेंगे की भावना से स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़ा था। इसी दौरान अंग्रेजों की नजरबंदी में रह रहे सुभाष चंद्र बोस भेष बदलकर भारत से बाहर निकल गए। 1937 में वंदे मातरम के संबंध में कांग्रेस ने एक समिति स्थापित की थी। मुसलमानों की आपत्तियों के कारण वंदे मातरम की काट छांट को इस समिति ने मान्यता दी। बाद के समय में सुभाष चंद्र मन से भी कांग्रेस से दूर चले गए।
1: भारत से बाहर निकलने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की धुरा संभाली। सुभाष चंद्र और आजाद हिंद फौज के कारनामों ने अंग्रेजी सत्ता को हिला कर रख दिया। आजाद हिंद फौज का कदम कदम बढ़ाए जा गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन वंदे मातरम का स्थान कायम रहा। इससे पहले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी जैसी क्रांतिकारियों की संस्थाओं ने वंदे मातरम शब्द का ही समर्थन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र की भी वंदे मातरम पर अपार श्रद्धा थी।
0: आजाद हिंद फौज की स्थापना के बाद सिंगापुर रेडियो से सुभाष चंद्र द्वारा किए गए भाषण के बाद वंदे मातरम की ध्वनि मुद्रिका प्रसारित की गई। आगे चलकर यही संगीत रचना आजाद हिंद फौज में मार्चिंग सॉन्ग के रूप में इस्तेमाल की गई। इस संगीत रचना के रचनाकार थे तिमिर बरन भट्टाचार्य। भारतीय बोलती फिल्मों के शुरुआती दौर में शास्त्रीय संगीत के कई बुजुर्ग फिल्मों की ओर मुड़े। न्यू थिएटर्स के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तिमिर बरन भट्टाचार्य थे। तिमिर बरन भारत के पहले गिने चुने शास्त्रीय वादन करने वाले सरोद वादकों में से थे। शास्त्रीय वाद्य संगीत में उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब से उन्होंने सरोद वादन की शिक्षा ली थी।
1: देवदास, इस कुंदन लाल सहगल अभिनीत फिल्म के उनके द्वारा दिए गए संगीत को लोकप्रियता मिलने के बावजूद वे फिल्मी दुनिया में नहीं रमे। बैले जैसे समूह नृत्य के लिए, नृत्य नाटिकाओं के लिए उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए। सिम्फनी और पॉलीफोनी जैसे प्रकार हमारे शास्त्रीय संगीत में तो नहीं है। वे स्वयं शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता होने के कारण भारतीय राग रागिनियों को सिम्फनी की तरह कैसे संयोजित किया जा सकता है, इस दिशा में उन्होंने प्रयोग शुरू किए।

वंदे मातरम की उनके द्वारा बनाई गई रचना को उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना माना जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए सभी संगीत प्रयोगों का उत्कर्ष बिंदु इस रचना में साधा गया है। दुर्गा राग में बंधी ये संगीत रचना बंगाल के प्रसिद्ध रविंद्र संगीत से अलग है। वंदे मातरम को संगीत देने वाले शुरुआती दौर के संगीतकारों में से अधिकांश बंगाल या महाराष्ट्र के ही संगीत विशेषज्ञ थे। रविंद्रनाथ की संगीत रचना बंगाल में लोकप्रिय थी ही, फिर भी उससे अलग अधिक जोशीली और मार्चिंग सॉन्ग के लायक तालबद्ध संगीत रचना तिमिर बरन ने की। वंदे मातरम की उपलब्ध संगीत रचनाओं में से सर्वोत्तम संगीत रचनाओं में एक ये रचना है।

0: नेताजी सुभाष चंद्र ने आजाद हिंद फौज के रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक सशस्त्र लड़ाई खड़ी की। अंग्रेजों को दी गई वो सबसे बड़ी सशस्त्र चुनौती थी। दुर्भाग्य से नेताजी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। प्राकृतिक आपदा के कारण चलो दिल्ली का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच करने वाली आजाद हिंद फौज को भारत की पूर्वी सीमा के पास पीछे हटना पड़ा। आजाद हिंद फौज को मिले जनता के अपार समर्थन के कारण अंग्रेजों को इन सैनिकों को दी गई सजाएं रद्द करनी पड़ी।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 45वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमेरिकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आरना सबालिंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र

0: इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वीएइरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवु ओजुकवु और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही।
5: For BRICS particularly, higher economic activity.
0: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता है।
5: And transparent trade and investment.

0: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स की विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
1: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
2: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के ARSS ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत

0: कार्य लगातार जारी है।
1: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आरेना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आरेना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मल हार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे तीन देवियां फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा एस डी बर्मन की तर्ज।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
1: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: तेरे घर के सामने, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: जागे से सोती रातों में जागे से मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज थी।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गडले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी न कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती से।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।

नहीं बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल।

संगम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे जब जब फूल खिले इस फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नग में यही संपन्न होता है।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ इंदौर से।
0: जी ज्योति जी इंदौर से, बताइए कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ
0: जी। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों? अभी तो त्योहारों के बिल्कुल मौसम जैसा आ गया है ना?
1: जी। बच्चे हैं छोटे,
0: हाँ।
1: 6 साल का है, 3 का है।
0: तो मतलब दिन भर व्यस्तता तो आपकी रहती ही होगी, है ना?
1: जी
0: हाँ, क्योंकि छोटे बच्चों को उनका ध्यान
1: स्कूल
0: रखना।
1: जाते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: जी
0: स्कूल जा रहे हैं तो उनका टिफिन बनाना है, फिर घर वापस आ रहे
1: जी
0: हैं तो तब भी बच्चों को कुछ ना कुछ नाश्ता, कुछ अलग अलग तरह की चीजें चाहिए होती हैं, है ना?
1: जी
0: जी।
1: हाँ,
0: तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं या घर पर ही पढ़ते हैं बाद में, स्कूल से आने के बाद?
1: ट्यूशन जाता है एक बड़ा, एक नहीं जाता छोटा।
0: जी। तो यानी कि आपको तो समय ही नहीं मिलता होगा अपने लिए।
1: हाँ बहुत कम मिलता है।
0: ऐसे में फिर रेडियो किस तरह सुन पाती हैं आप?
1: जी सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, ये सुनते हैं हमारे हस्बैंड।
0: जी, तो पति देव सुनते हैं और आप भी साथ में सुनती हैं, है ना?
1: जी।
0: जी, तो ज्योति जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है ममता, गीत से बोले रहे ना रहे हम।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं किस सखी का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है?
1: वैष्णवी मुड़े।
0: वैष्णवी मुड़े कहाँ से बात कर रही है?

0: नांदेड़ से।
1: जी वैष्णवी बताइए, नांदेड़ से कैसी हैं आप और कैसा है नांदेड़?
0: नांदेड़ तो अच्छा है, ये भी अच्छी हूँ।
1: और बताइए क्या करती हैं आप, परिवार में कौन है?
0: परिवार में मेरा छोटा बच्चा।
1: हाँ हाँ
0: और मम्मी जी है।
1: अच्छा परिवार है, मतलब भरा पूरा परिवार है।
0: हाँ परिवार है।
1: और आप क्या करती हैं बताइए आप?
0: मैं घर पर रहती हूँ, छोटा बेबी है 5 महीने का।
1: ओ ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है, अभी तो आपको हर वक्त उसका ध्यान रखना पड़ता होगा।
0: हाँ
1: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: ABCD मतलब गन गन गणपति वाला गाना।
1: ABCD फिल्म का, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है?
1: मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश गोंडा से।
0: उत्तर प्रदेश गोंडा से क्या बात है?
1: आज मैम मेरी पहली बार कॉल लगी है ना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ।
0: एक बात बताएं अनु जी, आपकी आवाज से ही समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, और हम भी बेहद खुश हैं कि आपने कॉल लगाने की कोशिश की। क्या करती हैं आप, बताइए?
1: मैं जॉब करती हूँ और तैयारी करती हूँ रेडियो के साथ मैच की।
0: जॉब कर रही हैं और तैयारी किस चीज की?
1: जिस जॉब पे हूँ ना उसी, और अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए।
0: अच्छा, तो प्रमोशन आपको मिल जाए इसके लिए आप कोशिश कर रही हैं और उसी की तैयारी कर रही हैं। जी जी, तो उसके लिए पढ़ाई करनी होती होगी, कैसे क्या करना होता होगा?
1: उसके लिए मतलब हाँ पढ़ाई करनी पड़ती है, तो वो कर लेते हैं हम।
0: तो आप देखिए जॉब भी कर रही हैं और पढ़ना भी है क्योंकि प्रमोशन चाहिए, तो कैसे समय निकालती हैं फिर पढ़ाई के लिए?
1: मैं तो पढ़ाई के लिए भी समय निकाल लेती हूँ और साथ साथ रेडियो भी सुनती रहती हूँ, और जीवन भारती में हमेशा सुनती रहती हूँ। यहाँ के कार्यक्रम मुझको बहुत अच्छे लगते हो, आज के फनकार हो।

0: चाहे पिटारा हो गया, हेलो फेली हो गया, बहुत सारे कार्यक्रम है जो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं।
1: अरे वाह, यानी कि आप तो एक दिन, मतलब कि दिन का जो हम 12 घंटा इस्तेमाल करते हैं ना काम काज करने के लिए, उसमें तो आप कई सारे काम कर लेती हैं। जॉब भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और रेडियो भी सुन रही हैं। क्या बात है। तो हम आपको आपके प्रमोशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई अभी से देते हैं अनु पांडे जी।
0: फूलों की ताजगी चांदनी की चमक, विविध भारती रेडियो तो है खुशियों का कमल।
1: क्या बात है।
0: और मैम हमको गाना सुनना है, फिल्म का नाम है तेरे नाम और गाने के बोल है तुमसे मिलना बातें करना। आज ना हमको आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हमें भी आपसे बात करके बहुत ज्यादा आनंद आया अनु पांडे जी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सहेली।
1: हेलो सहेली,
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, किससे बात हो रही है?
2: निशा कुशवाहा बोल रही हूँ मैम, निशागढ़ जिला अशोक नगर से।
0: अच्छा, बताइए निशा जी, कैसी हैं आप?
2: ठीक है, आप कैसी हो दीदी?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
2: जी दीदी, अंदाज पिक्चर का सुनवा दीजिए, आएगा मजा बरसात का।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं, लेते हैं ये कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम है आरती डांगी है, मध्य प्रदेश जिला सागर ग्राम जमीन खमरिया से बोल रहे हैं।
0: खमरिया से बोल रही हैं आप, बताइए जिंदगी में सब कुछ कैसा चल रहा है और कैसा चल रहा है आपका शहर?
1: जिंदगी में दीदी सब कुछ अच्छा है, शहर भी अच्छा है, लेकिन दुख सुख तो आते जाते रहते हैं। अभी हमारी माँ का डेथ हुआ है दीदी, इसलिए अधिक दुखी है।
0: जी हम समझ सकते हैं आरती जी की माँ का ना होना, यानी ये खालीपन किसी भी चीज, कोई धन कोई पद किसी से भी पूरा नहीं किया जा सकता, है ना?
1: जी दीदी, मेरा मायका है छिंदवाड़ा जिला का और सागर का ससुराल है यहाँ का, मतलब 350 किलोमीटर की दूरी है।
0: अच्छा, 300 किलोमीटर की दूरी है ससुराल और मायके के बीच में।
1: जी दीदी, हम बिल्कुल महाराष्ट्र के किनारे पे रहते हैं एकदम।
0: अच्छा, आप परिवार में कौन कौन है?
1: सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है और मेरे दो बेटा है, पति देव, हम सब लोग भारत।

0: फुल परिवार से।
1: आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: आज हम गीत सुनेंगे दीदी राजा और रंग फिल्म का, वो तो कितनी अच्छी है माँ के लिए।
1: जी, तो आपकी माँ को समर्पित ये गीत प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किसका कॉल लगा है? अपना नाम बताइए।
1: कृष्णा लोवंशी, जिला खंडवा से लगा मेरा फोन।
0: क्या बात है, आप क्या करते हैं?
1: खेती करती हूँ दीदी मैं।
0: अरे वाह, खेती का काम करती हैं। तो इस वक्त क्या आप खेत पर ही हैं?
1: दीदी खेत में नहीं, घर पे हूँ और मक्का लगाई है दीदी मैंने।
0: मक्का लगाई है, तो कब तक इसकी कटाई हो जाएगी फिर?
1: ये अभी दीपावली तक होगी दीदी।
0: अच्छा, दीपावली तक।
1: मेरे दो लड़के हैं,
0: हाँ हाँ
1: एक खेती करता है और एक लड़का बड़ा वाला मेडिकल पे है।
0: तो आप भी जाती हैं खेती करने?
1: जाती हूँ जी। मेरी बहू भी है।
0: हाँ हाँ तो वो भी जाती
1: वो
0: हैं?
1: भी, हाँ दोनों जाते हैं।
0: अरे वाह जी, ये तो बहुत मेहनत का काम है खेती करना। कृष्णा जी, हमारे देश का तो आधार है किसान और खेत। तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? हमें आपसे बात करके बेहद प्रसन्नता हो रही है।
1: गदर फिल्म का है दीदी, ऊर्जा काले कावा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म गदर का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, अपना नाम बताइए सहेली।
1: मैम, मैं अनीता वर्मा बोल रही हूँ, द्वारका, दिल्ली से।
0: दिल्ली से अनीता वर्मा जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, यहाँ पर भी सब ठीक है। और अपने बारे में बताइए अनीता जी।
1: हाँ मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ और पहले सहेली में फोन करती रहती हूँ 2.5-3 महीने के बाद, सबका नंबर लगता रहे।
0: जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने 2 महीने का पूरा, जो हम अनुरोध करते हैं, आपने वो समय का पूरा शांति से इंतजार किया और 2 महीने के बाद कॉल कर रही हैं।
1: हेलो सहेली, ये भारती के सारे ही प्रोग्राम क्या क्या बताऊं मैं, सभी बहुत पसंद है मुझे, इन्हीं के साथ मेरा काम होता रहता है।
0: जी बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप विविध भारती के सारे कार्यक्रमों को पसंद करती हैं। रेडियो तो सुनती ही हैं और सारा दिन आप संगीतमय, आपका दिन ये निकलता है। इसके अलावा और आप क्या करते हैं
1: मैम? घूमने का भी शौक है।

0: 2-4 महीने बाद चक्कर लग ही जाता है। घूमने की बहुत शौकीन हूँ, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, सूट साड़ी ये ज्यादा मुझे पसंद आते हैं अपने इंडियन जो
1: जी। और
0: हमारे ये कपड़े
1: जी
0: हैं।
1: जी जी और दिल्ली तो प्रसिद्ध भी है ना शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए बिल्कुल यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें, हर प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं, और आप उसका शौक भी रखती हैं। और देखिए, एक महिला को ये सारी चीज़ों का शौक होना भी चाहिए, आपको क्या लगता है?
0: हाँ जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर महिला ही नहीं शौकीन होगी तो और कौन होगा।
1: जी
0: किसी
1: हाँ
0: का जस्ते हैं और कोई तो पहन नहीं सकता
1: बिल्कुल
0: ये सारी चीजें।
1: जी,
0: जी
1: इतनी सारी चीजें होती हैं हम महिलाओं के लिए पहनने के लिए। और जब शौक मन में रहता है ना, प्रसन्नचित रहता है, तो हम घर भी बहुत अच्छे से रखते हैं, खुद को भी खूब अच्छे से सुंदर बनाते हैं, और एक प्रसन्न वातावरण जो घर का रहता है वो हमेशा सकारात्मक सोच के तरफ आगे बढ़ता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है अनीता जी। आज बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मुझे सुनना है पर्दे के पीछे, ये फिल्म का नाम है, गाना बहुत ही अच्छा है। तेरे बिन जिया ना लगे, आ जा रे
1: बिल्कुल, चलिए तो शायद वो आ ही जाएंगे जिसके बिना आपका जिया नहीं लग रहा है। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। ये कौन सी सहेली है, क्या नाम है आपका, अपने बारे में बताइए।
1: मेरा नाम है शांति वारी, मैं उदयपुर वारियो की घाटी से बोल रही हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका शांति जी।
1: धन्यवाद
0: जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी। तो घर के काम काज में दिन भर सारा समय निकल जाता होगा, है ना?
1: हाँ, निकल जाता है ना दिन भर। तीन फैमिली एक साथ रहती है, रसोई एक ही है।
0: ये तो आज के जमाने में उदाहरण है आपका परिवार की, तीन परिवार एक साथ रहता है और आपने कहा रसोई भी एक ही है।
1: हाँ, एक ही है
0: जी, बहुत ही सुंदर बात है। तो जब इतना बड़ा परिवार है शांति जी, ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं होता कि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना या कसरत करना या वर्जिश करना कहीं छूट जाता होगा?
1: नहीं नहीं, मतलब हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है। तीनों भाई एक साथ रहते हैं, काम भी एक ही है, खाना भी मिलजुल के बांट लेते हैं। सुबह बड़े वाले बीच वाले 11 बजे बीच वाले बनाते हैं, सुबह 5 बजे का बड़े वाले बनाते हैं, शाम को मैं बनाती हूँ।
0: अच्छा, तो मिल बांट के आपने इस तरह से काम का बंटवारा कर लिया है। और अपने बारे में बताइए, और कैसे क्या सब चलता है दिन भर घर पर? परिवार इतना बड़ा है तो बच्चे भी सब होंगे,
1: है ना? बच्चे भी, मेरे 2 बच्चे, बड़े वाले के 2 बच्चे,
0: तो ये तो ऐसा खिलखिलाता सा परिवार है ना?
1: हाँ
0: जी।
1: और साथ में ननद भी रहती है, 27 साल हो गए ननद के साथ रहते रहते।
0: अच्छा, आपकी एक ननद भी साथ में रहती है।
1: हाँ
0: शांति जी, बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म है करण अर्जुन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये गाना।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर गीत है और आपका परिवार तो इस गीत पर पूरे तरह से उतर रहा है, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद, और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली से जुड़ने के लिए, वे निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहला कॉल आप ही का लग जाए। और जिन सखियों से आज हमने बात की है उनसे ये अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। तो सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सुनने वाले सभी को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 400-24662, 400-24662। एक और नंबर है 2867-0288, 2867-0288। मुंबई का STD कोड है 022, अंग्रेजी में 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नायक, संपादन में सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए अपनी सहेली दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार सखियों के।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी हैं सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी में आज सुनिए अरुण शेखर की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में। आवाज ही पहचान है।

आज जब दूसरी पाली में माया क्लिनिक के लिए निकली तो उसका मूड कुछ ऑफ था, कारण कि आज फिर उसके ब्याह को लेकर घर में बकझक हो गई थी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर माया दुनियावी बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, और ऐसा भी नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई प्रवेश कर गया था। वो भी आज की नई सोच के मुताबिक पहले सेटल हो जाना चाहती थी। आज शायद ही कोई लड़की चाहती है कि वो अपने खर्चों के लिए अपने पति पर निर्भर रहे, उसे अपनी हर जरूरत के लिए पति का मुंह देखना पड़े। इसी सोच में वो भी थी, नए क्लिनिक की शुरुआत की थी, वह भी चल नहीं रेंग रहा था। कोई भी बिजनेस सेट होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। माया इसीलिए अभी विवाह जैसे बंधन में बंधने के लिए मन नहीं बना पाई थी, पर हर बार माँ को मना करना उसके लिए भारी होता जाता था, क्योंकि हर माँ इस बात के लिए चिंतित रहती है कि उसके रहते उसके बच्चों का विवाह हो जाए। यदि लड़की है तो और चिंता रहती है, माया क्या करे क्या न करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसी उधेड़बुन में वो क्लिनिक पहुंच गई। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह रेडियो ऑन किया। कुछ पेशेंट बाहर इंतजार कर रहे थे, उनका उसे ध्यान ही न रहा, क्योंकि उस समय उसके पसंदीदा आरजे का प्रोग्राम चल रहा था। चिट्ठी आई है, मुझ तक अपनी खबर न भेजो, ये बात मुझे मंजूर नहीं। दिल के तुम्हारे बात न पूछूं ऐसा भी मगरूर नहीं। दिल की तुम्हारे बात न पूछूं ऐसा भी मगरूर नहीं। थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी चलती रहती है रिश्तों में। अब जिद छोड़ो मुंह ना मोड़ो खत लिख छोड़ो, ऐसी क्या रुसवाई है। चिट्ठी आई है।

डॉक्टर माया की असिस्टेंट ने उसे आवाज दी तो उसकी तंद्रा टूटी। उसे याद आया कि वो क्लिनिक में है, वरना वो गाने के साथ किसी और ही दुनिया में विचरण कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक मीठी मुस्कान खिल गई। वो बोली, हाँ भेज दो। पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वरना इतनी देर प्रतीक्षा करना मुश्किल हो जाता। खैर, माया ने उसकी नाड़ी देखी, पूछा, क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट ने कहा, सिर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती। माया ने मन ही मन कहा, नींद तो उसे भी नहीं आती, पर वो किससे कहे। जिस दिन आरजे समीर का प्रोग्राम सुनती है, वही ख्वाबों ख्यालों में रहता है। उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसके गानों की पसंद, सब कुछ कमाल है। समझ में नहीं आता कि उसके लिए दीवानगी सुकून है या दर्द। पेशेंट से बोली, आप नींद ठीक से लिया करें, नींद न लेने से एसिडिटी रहती है और इसी कारण सिर में दर्द रहता है, और कोई खास बात नहीं है। लेकिन लंबे समय तक अगर एसिडिटी रही तो दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। खाने में छास यानी कि मट्ठा का अधिक इस्तेमाल करें, सलाद में ककड़ी जरूर खाएं, रात में देर तक बिल्कुल मत जागिए, समझ रहे हैं आप, और आप ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। पेशेंट ने जी और धन्यवाद के साथ विदा ली। माया ने रेडियो की आवाज फिर तेज कर दी। एफएम के दीवानों, मैं आपका दीवाना समीर आपकी नजर करता हूं ये गीत।

ऐसे गाने सुनकर हमेशा उसे लगता कि वो गाने उसी के लिए बजाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से चित्र होते हैं जिनको देखने से लगता है कि वो आपको ही निहार रहे हैं। उसी प्रकार माया को भी लगता कि समीर भी कहीं ना कहीं उससे प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके हर प्रोग्राम को सुनती और खत लिखती, खत में बहुत कुछ जाहिर करती। वो पत्र केवल गीतों व कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहते, वो उसमें अपने दिल की दास्तान भी बयान करती। वो जैसा सोचती कहीं ना कहीं वही भावनाएं उसे गानों के द्वारा सुनाई पड़ती। वो जो सोचती सच्ची तो है। इस प्रकार धीरे धीरे माया को समीर की आवाज का एडिक्शन हो चला था, यानी कि नशा हो चला था। समीर हमेशा तो रेडियो पर रहता नहीं था, उसने इसके लिए तरकीब निकाली। वो उसके कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके रख लेती और उसे बार बार सुनती, लेकिन संडे के कार्यक्रम को वो बिल्कुल मिस नहीं करती। उसमें श्रोताओं के पत्र पढ़े जाते, जिसमें श्रोता अक्सर उसकी आवाज की तारीफ करते, कुछ गानों का जिक्र होता। यह सुनकर माया को भी अच्छा लगता।

डॉक्टर माया को जलन तब और होती जब वो किसी और महिला का पत्र हंस हंस कर पढ़ता और उसकी लिखावट की तारीफ करता, उसको शुक्रिया कहता, कहता कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मतलब आप अच्छे हैं, अच्छी चीजें देखने वाले की नजर अच्छी होती है, उसके पत्र भी पढ़े जाते। परंतु कई बार ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर माया ने अपने खत के इंतजार में पूरा कार्यक्रम सुना परंतु उसका पत्र नहीं पढ़ा गया। समीर के मुंह से अपना नाम सुनने की प्रतीक्षा में उसने न जाने

मन तो किया कि रेडियो को उठाकर पटक दे, परंतु वो ऐसा नहीं कर सकी। उसे रियलाइज हुआ कि वो डॉक्टर है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। कई बार हमारी बनाई हुई सीमाएं ही हमें बोझ लगने लगती हैं, पर वही हमें बचाती भी हैं। इस बीच कार्यक्रम समाप्त होने का वक्त आ गया। समीर ने शेर पढ़ा। FM के दीवानों में आपका दीवाना समीर। चलते चलते कुछ शेर आपकी नजर करता हूं। कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ अमृत है और कुछ मधुमय गरल है जिंदगी। नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, और फिर ये जुल्म ताशों का महल है जिंदगी। और एक गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूं, तो खुश रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। इस शेर ने माया को खुद में झांकने को विवश किया।

इन्हीं सवालों को खोजती खोजती माया घर पहुंच गई। कोई हल नहीं था। कई बार सवाल का हल खोजते खोजते हम और उलझ जाते हैं। ऐसे में हमें सोचने की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, यानी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। माया खाना खाकर सीधे बिस्तर पर आई। हमेशा वो खाने के बाद

थोड़ा वॉक करती थी, परंतु आज मन अनमना था तो सीधे सोने के कमरे में आ गई। किसी से ज्यादा बात नहीं की, वो अपने में ही खोई रही। वो क्यों खोई है, वो क्या खोज रही है, इसका कोई तर्क संगत जवाब उसके पास भी नहीं था। माँ ने बेटी को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, इतना खोई खोई सी क्यों है? तूने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना? माँ सब कुछ समझती है, उसे झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वो तुमसे सुनना चाहती है। माँ जानना चाहती है कि उसकी बेटी की जिंदगी में कौन है, पर माँ को वो क्या बताए कि उसने ख्वाबों की नींव पर प्रेम का महल बनाया है, उसी में रह रही है। वो जिसे प्रेम कर बैठी है वो उसे जानती तक नहीं, उससे कभी मिली नहीं। उसकी आवाज की दीवानी है, उसके अंदाज की दीवानी है, उसी के साथ जीवन के सपने बुन लिए हैं, उसी के साथ शामें गुजारती है।

0: आज जब वो क्लिनिक के लिए निकली तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। हालांकि उसके घर से क्लिनिक बहुत दूर नहीं था, यही कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी रही होगी, परंतु आज उस रास्ते से कोई रैली निकल रही थी इसलिए इतना ट्रैफिक था। उसे बहुत झुंझलाहट हुई, अपनी स्कूटी इधर उधर जैसे तैसे काट कर क्लिनिक पहुंची। स्कूटी साइड स्टैंड पर लगाई, सीट खोलकर हेलमेट रखा, तभी आसमान में पक्षियों की मंडली गीत गाते हुए उधर से गुजर गई। उसे बड़ा भला लगा, वो एक पल को ठहर गई। उसकी नजर डाल पर बैठे हुए नीलकंठ के जोड़े पर पड़ी। इन छोटे छोटे दृश्यों से वो लसित हो उठी। उस उल्लास को उस आवाज ने कई गुना बढ़ा दिया। डॉक्टर माया लिखती हैं कि आपके कार्यक्रम के इंतजार में हमारा हर पल गुजरता है, आपकी आवाज कानों में गूंजती रहती है और कुछ सुनाई नहीं देता। अरे डॉक्टर माया जी, ऐसा मत कीजिए, आपके ऊपर लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। अगर आप इस प्रकार बेखबर हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? वैसे इंतजार तो मुझे भी रहता है आपके मीठे मीठे खातों का, यही तो मेरी लाइफ है। आपके शब्दों में जो प्रेम है वो अद्भुत है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत होगी। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो आपको मुस्कुराते हुए देखते होंगे। और हाँ, मुझे तो लगता है कि आपके मरीज तो ठीक होना ही नहीं चाहते होंगे। और मेरी आवाज तो इसलिए आपको अच्छी लगती है क्योंकि आप दिल से सुनती हैं, लोग सुनते होंगे कानों से। अभी और खत, और भी बातें।
1: लिखे जो खत तुझ

यकीन हो चला था कि उसकी बात उस तक पहुंच गई। आज जोर से चिल्लाना चाहती थी, समीर आई लव यू। ये तब की बात है जब सोशल मीडिया जैसी चीज नहीं हुआ करती थी, मोबाइल भी इतना कॉमन नहीं हुआ था। माया से अब नहीं रहा जा रहा था कि कैसे भी करके वो समीर से मिलना चाहती थी। टेलीफोन डायरेक्टरी से उस रेडियो स्टेशन का नंबर निकाला, उसने उसे 3 नंबर मिले। पहला ट्राई किया, आवाज आई, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। दूसरा ट्राई किया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ये संदेश किसी महिला की आवाज में था। एक बारगी माया को लगा कि जोर से गाली दे, पर वो बोली, चुप कर, समीर को बुला। पर वो रिकॉर्डेड आवाज थी, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बड़ी कोशिशों के बाद तीसरा नंबर लग गया। उसका धैर्य काम आया। किसी ने फोन उठाया और बोला, कौन? माया, डॉक्टर माया, क्या समीर जी से बात हो सकती है? रूखी आवाज में उत्तर मिला, आप उनसे बात नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? माया ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्योंकि वो नहीं है। नहीं है मतलब? अभी कुछ देर पहले तो थे। हाँ थे, पर अब नहीं है, वो चले गए, उनका शो खत्म हो गया। अब कब आएंगे? ये हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? ऐसा रूल है, आपका मैसेज दे देंगे। अच्छा ठीक है। माया उदास हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें।

माया का क्लिनिक कुछ खास नहीं चल रहा था, वो उस तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। अधिकतर समय सपने बुनने में निकल जाता। उसकी शादी, बच्चे, न जाने क्या क्या सोच लिया करती थी। जब भी वो किचन में खाना बना रही होती, उसे लगता अभी अचानक समीर आएगा और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेगा। वो चौंक उठेगी, फिर खुद को ही समझाती, क्या पागलपन है, वो यहाँ कैसे आ सकता है, मुझसे तो कभी मिला भी नहीं, मेरे घर का पता भी उसे पता नहीं है। फिर वो सोचने लगती कि ठीक है, वो मुझसे नहीं मिला, मैं उससे नहीं मिली, पर मेरे खत उसे मिले ही हैं। उसकी आवाज में मैंने उसको महसूस किया है।

ये बात माया अच्छी तरह जानती थी कि वह अपने साथ छल कर रही है। जिन ख्यालों के सहारे वो जिंदगी जीने के सपने देख रही है वो संभव नहीं है। भोजन की खुशबू से पेट नहीं भर सकता, बल्कि वो भूख को और बढ़ा देती है। मोहब्बत के एहसासों से जिंदगी नहीं चलती, हकीकत की जमीन पर उतरना ही पड़ेगा। डॉक्टर माया ने सोच लिया अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाना ही है, कुछ भी हो जाए। वो समीर से बात करके रहेगी। एक बार फिर उसने ऑफिस में कॉल किया, फिर से वही आवाज, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। माया का धैर्य जवाब दे रहा था।

आज जब माया क्लिनिक जाने को तैयार हो रही थी तो माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाना, कुछ लोग आने वाले हैं। पहले तो माया को लगा कि कह दे आप भी ना किस किस को बुला लेती हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप मिल लेना। परंतु माया ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठहर कर माँ को बड़े इत्मीनान से देखा, मुस्कुराई और कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी, कुछ लाना है तो बता देना। माँ ने कहा, अरे तू आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगी।

अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी कहानी आवाज ही पहचान है, उन्हीं के स्वर में। संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। कोई डर है न कोई रोजनी है न कोई रोशनदान है, जिंदगी की ये इमारत कितनी आलीशान है। एक छोटा सा दिन इसमें रहता है, ये प्यार का नगीना है, तस्वीर उनकी जिसमें झिलमिलाती है। बात क्या कहूँ, कल रात दिल ने जो कही, आ जा के देख लूं तुझे जी भर के एक बार, उठे हुए हैं दिल में वो तूफान तेरे बगैर।

रंग भरा ये प्यार का तोहफा, खुशबू फैली हो जैसे रात की तन्हाई में। कितने मौसम बीत गए, ये रंगत तब जाके नजर आई है। जो अब आए हो तो कुछ देर बैठो, चुनिन की बेबसी का राज कलियों से पूछो।

आंखों की हया दिल मेरा चुरा लेती है, एक दिल एक निगाह कहाँ कहाँ छुपाऊं तुम्हें, सांसों की धड़कनों में कहाँ कहाँ बसाऊं तुम्हें। जिस तरह चांद सितारों में एक है, चांदनी फूल शरारों में एक है, रात खामोशी के तरानों में एक है, तू महजबी हजारों में एक है।

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और मिनट में पेश करेंगे, बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। ये उल्फत आपकी है, मेहरबानी आपकी। वो दिल का नशीमन जब ठिठक गई थी घटाएं, भीगी भीगी थी बादलों की चुनर, बरस रही थी फजाएं, हया का पर्दा उठा, दिल ही दिल में रही, लब तक आई न बात।

कहने को तो रात ठहरती नहीं, जुबान से तो कुछ न कहा, हुई नजरों से नजरों की बात। अजब अपना हाल होता जो विशाल यार होता, कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता।

आसमान की खुली पलकों पर सितारों ने ख्वाब सजाए हैं, जरा सी देर हो जाए तो क्या होगा, दिल से दिल की बात कुछ और होने दो, शम्माएं

मेरा गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई देशों के नेता इस समय नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच में शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कार्यक्रम में सदस्य देशों और साझेदार देशों के 2000 से अधिक उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स व्यापार मंच है।
1: मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज टू द वर्ल्ड।
2: ब्रिक्स देशों से दुनिया को होने वाला वस्तु निर्यात 2003 में करीब 900 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी भी करीब 12% से बढ़कर अब लगभग 24% हो गई है।
0: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप्स और उद्यम शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख

मृतकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: श्रोते हो, आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीचे कार्यक्रम आपण ऐकत आहात। ठीक 7 वाजता आपण ऐकू शकणार आहात प्रादेशिक बातमीपत्र।
3: कधी एखादा सुगंध मनातली एखादी जुनी आठवण जागी करतो आणि कधी एखादा सूर मनाच्या दारावर अलगद प्रेमाची चाहूल देतो। तुझ्या कळ्या तुझी फुले तुझा सुगंध अंगणी हे गीत आहे श्रोते हो सप्टेंबर महिन्यातलं अजित मालंडकर यांचं। मंदार आपटे यांनी गायलेलं आहे, संगीत दिलं आहे प्रणव हरिदास यांनी।
4: बरे नवी सखी असा लपून घाव घालणी।
2: श्रोते हो, यानंतरची उद्घोषणा लगेचच प्रसारित

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग

0: दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
1: हम रोड, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो। और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam,

0: New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आर्थिक चुनौतियां, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
3: आज IMF ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। IMF ने भारत की इकोनॉमी के रेजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जब आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। 4 चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार

0: समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलबरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एचपीवी टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Russian President Vladimir Putin ahead of the 18th BRICS summit in New Delhi. Discusses progress across political, economic, defense, energy and regional and global issues. Prime Minister Modi reiterates on dialogue and diplomacy to resolve conflicts. Prime Minister also holds bilateral meetings with Iranian President and United Nations Secretary General. Heads of BRICS member countries attend leaders session of BRICS Business Forum. PM Modi says economic strength of BRICS grew at nearly twice the pace of rest of the world. Iran-backed Houthi

0: नीरज और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों, नजरों ने जब ख्वाबों को रंग देना शुरू किया तो दिल ने भी मोहब्बत की एक नई कहानी लिख दी। हाँ, आइए सुनते हैं यही खूबसूरत एहसास इस गीत में, जिसे हमने लिया है फिल्म ब्लैकमेल से। आवाज लता मंगेशकर की, शब्दकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है शर्मिली। गीतकार नीरज है, संगीतकार सचिन देव बर्मन है। आपने ये गीत सुना है ना, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को। जी हाँ, जिंदगी की खूबसूरती भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों, पल भर ठहरती है और फिर याद बनकर रह जाती है। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, कुछ रिश्ते और कुछ पल ऐसे होते हैं जिनके बारे में इंसान सोचता तो बहुत है, मगर जिंदगी उन्हें ठहरने नहीं देती। हाँ, जैसे अभी वक्त भी तो नहीं ठहर रहा ना। गुलजार साहब के खूबसूरत बोल और किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म किनारा का ये गीत सुनवाने जा रहे हैं, जाने क्या सोचकर नहीं गुजरा। आइए सुनते हैं ये गीत। संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

तो दोस्तों, अब इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज के गीतों की मिठास, या यूं कहें कि कसक, बहुत देर तक आपके साथ बनी रहेगी। फिलहाल आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। जाने

0: चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई, डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

बातें उनकी जो दिल की उड़ान को आंखों में भरकर जीते हैं, जिन्हें प्यार है अपनी कला से, और जो फिल्मों में अदाकारी नहीं करते बल्कि उन्हें जीते हैं।

खुराना को राष्ट्रीय पुरस्कार तो अभी मिला है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें जो यात्रा तय करनी पड़ी उसकी बात करना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ में 14 सितंबर 1984 के दिन सुरीली किलकारी गूंजी निशांत खुराना की, और बाद में माता पिता ने उन्हें नया नाम दिया आयुष्मान।

की उम्र से ही आयुष्मान ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्हें गाना बहुत पसंद था। अपनी गिटार के साथ वो कहीं खो जाया करते और सुनने वाले उनके कायल हो जाते। वो अपने गाने भी खुद ही लिखा करते। ऐसे में कई बार आसपास के लोगों को लगता कि आयुष्मान गायक या गीतकार ही बनेंगे, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही उन्हें एक नई राह दिखी। वो जुड़ गए थिएटर से।

नाटक। उन्होंने कई नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई है। धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधायुग के मंचन में उन्होंने अभिमन्यु का किरदार निभाया था। 5 साल थिएटर को देने वाले आयुष्मान चंडीगढ़ के मशहूर थिएटर ग्रुप आगाज और मंचन तंत्र की नींव रखने वालों में से एक माने जाते हैं। लेकिन थिएटर उनकी मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक रास्ता था।

साल की उम्र में उन्होंने एक पॉप रियलिटी शो में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने काफी काम किया, जैसे वो एक चर्चित एफएम में आरजे का काम करने लगे। उनका शो मान ना मान मैं तेरा आयुष्मान काफी पसंद किया जाता। देखते ही देखते वो एक बहुचर्चित टीवी रियलिटी शो में आ गए और उन्होंने उस शो को जीत भी लिया। इसी चैनल में उन्हें काम मिल गया वीडियो जॉकी का। आयुष्मान आवाज की दुनिया से निकलकर सबके सामने आ चुके थे और उन्हें लोग काफी

पहचान तो मिल गई थी और साथ ही मिल गया था कई टीवी शोज को होस्ट करने का काम भी। लेकिन एक सपना था जो अब भी अधूरा था। इस सपने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक रोज यूं ही रोड से जाते हुए आयुष्मान ने देखा किनारे बड़ी सी होर्डिंग में उनके फेवरेट स्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ओम शांति ओम का पोस्टर लगा है। यूं ही उनके मन में ख्याल आया कि एक रोज मेरी फिल्म की होर्डिंग भी यही लगेगी। ये खुली आंखों का सपना था और ये सपना सच हुआ जब 2012 में उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी विकी डोनर।

को सरल तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई थी। इसी तरह चुप्पी रखे जाने वाले एक और विषय पर आयुष्मान ने बेहतरीन किरदार निभाया। ये फिल्म थी शुभ मंगल सावधान। हनी हनी।

ये गीत फिल्म के लिए सिलेक्ट होते ही पहले ही मीटिंग में आयुष्मान ने विकी डोनर फिल्म से पहली बार प्रोड्यूसर बने जॉन अब्राहम को गाकर सुनाया और जॉन ने इस गाने को फिल्म में आयुष्मान की आवाज में ही रखने का फैसला किया। इस फिल्म और गीत दोनों के लिए ही आयुष्मान को बहुचर्चित फिल्म पुरस्कार मिला। विकी डोनर लीक से हटकर फिल्म थी जिसमें एक सामाजिक मुद्दे

आयुष्मान की फिल्मों की संख्या दहाई में है, लेकिन उनके किरदार शतक जमाते हैं। ऐसे चुन चुन के किरदार उन्होंने लिए हैं कि अलग ही रंग नजर आता है, उनका थिएटर का अनुभव नजर आता है एक थिएटर कलाकार की भूमिका में। ये फिल्म थी नौटंकी साला।

एक किताब को किसी और के नाम से छपवाने वाले और उस किताब के लेखक से प्यार करती बिट्टी को ये बात बताने को बेताब चिराग दुबे के किरदार में जान भर देते हैं आयुष्मान फिल्म बरेली की बर्फी में।

सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को जीता उनके किरदार प्रेम प्रकाश तिवारी ने, जो अरेंज मैरिज से पत्नी बनी संध्या को स्वीकारने में बहुत देर लगाते हैं। ये कहानी तो मानो हर आम इंसान को छू गई। आयुष्मान का ये किरदार जिस फिल्म में नजर आया वो फिल्म थी दम लगा के हईशा।

आयुष्मान खुराना की बात हो तो उनके बिल्कुल अलग किरदारों की बात न की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी तीसरी ही फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया शिवकर बापूजी तलपड़े का, जो भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके बारे में कहा जाता है

कि उन्होंने भारत का पहला विमान बनाया था, लेकिन वो गुमनाम ही रहे। इस किरदार को निभाने के लिए आयुष्मान ने अपना वजन गिराया और मराठी भी सीखी। ये फिल्म थी हवाई ज्यादा।

दिवस के दिन जन्मे आयुष्मान को हिंदी से बड़ा लगाव है और उसका कारण है उनकी माँ जो हिंदी में एमए है। बचपन से ही आयुष्मान को भाषा से लगाव रहा। वो न सिर्फ अच्छा साहित्य पढ़ा करते बल्कि वो बहुत ही छोटी उम्र से ही लेखन की ओर भी मुड़ गए थे। यही नहीं, उनका एक ब्लॉग भी है जिसे वो हिंदी में लिखते हैं और आज भी जब भी उन्हें समय मिलता है कोई ना कोई कविता शेर वगैरह उसमें जोड़ते रहते हैं। भाषा से लगाव का आलम तो ये है कि आर्टिकल 15 के शूट के दौरान जब वो कुछ समय के लिए लखनऊ में थे तो उन्होंने उर्दू सीखना शुरू कर दिया था। दरअसल उन्हें लगता है कि इससे उनके लेखन में उन्हें काफी मदद मिल सकती है। जहां बात हो रही है आयुष्मान के शौक की, तो यहां कुछ बातें बताने से हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। जैसा कि आपको पता ही है कि आयुष्मान को गाने का शौक है, लेकिन कई बार उन्होंने गाने के जरिए अपनी छुट्टियों का खर्च भी निकाला है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कॉलेज के दिनों में वो दिल्ली से मुंबई के लिए चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस में अपने दोस्तों के साथ चढ़ जाया करते और हर कोच में जाकर गाने गाकर परफॉर्म करते। खुश होकर यात्री उन्हें पैसे दे देते और इतने पैसे इकट्ठा हो जाते कि वो सभी दोस्त मिलकर गोवा की ट्रिप के खर्चे निकाल लेते।

गाने थिएटर जैसी चीजों में आयुष्मान का मन लगता था, वहीं वो पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। आयुष्मान ने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री और मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। पढ़ाई के कारण ही तो उन्हें अपनी पत्नी ताहिरा मिली। जी हाँ, ताहिरा आयुष्मान के बचपन के साथी रही हैं। दोनों फिजिक्स के ट्यूशन में साथ पढ़ा करते थे। यहाँ दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी। ताहिरा आयुष्मान के करियर के उतार चढ़ाव में उनके साथी रही और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित

आयुष्मान की फिल्म आर्टिकल 15 उनकी एक बहुचर्चित फिल्म रही। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और इस किरदार के लिए उन्हें काफी सराहना मिली। ये फिल्म सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखती है। इस किरदार के जरिए उन्हें गंभीर भूमिका निभाने में माहिर मान लिया गया है। यूं तो हर भूमिका में आयुष्मान ऐसे ढल जाते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं, लेकिन 2018 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने लोगों के मन को जीत लिया। आयुष्मान ने इस फिल्म के लिए पियानो बजाना सीखा और ब्लाइंड पियानिस्ट से मुलाकातें भी की। उनकी इस तैयारी ने उनके किरदार में जान फूंक दी। उन्होंने इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया। जी हाँ, बात हो रही है फिल्म अंधाधुन की।

आयुष्मान इसी तरह अलग अलग किरदारों में ढलकर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाते रहे, इस कामना के साथ विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं।

आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था युवा अभिनेता आयुष्मान खुराना पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। आज के फनकार।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दुनिया के इस आपाधापी में न जाने कितने रिश्ते कितनी बातें पीछे छूटती जाती हैं। ये जिंदगी अपनी रफ्तार में खींचती हमें

0: उन सभी से दूर ले जाती है जो कभी हमारे दिल के करीब हुआ करते थे। न जाने जिंदगी के मन में क्या है, क्यों वो हमें अपनों के करीब नहीं रहने देती। काश जिंदगी के किसी मोड़ पर उससे फिर मुलाकात हो, जिसने कहा था,
1: छोटी सी ये दुनिया।

यूं ही चलते चलते कदम उनकी राहों में आ गए, न चाहते हुए भी हम निगाहों में आ गए। कहने को लाख बातें थी, आकर लब पर रुकी। हम कुछ न कह सके, बस उसकी पनाहों में आ गए। प्यार मोहब्बत के किस्से सुनाती रही ये दुनिया, हम इस किस्से को अपना बनाकर ही आ गए।

0: मिलने जुलने के सिलसिले बढ़ते जो जाएंगे, हम न रहेंगे, हम आप ही हो जाएंगे। ना मोहब्बत का जब भी लबों पे लाएंगे, हम न इकरार करेंगे, सीधे मुकर ही जाएंगे। क्या फायदा दिल की बातों को होठों से कहने का, हम मुंह को सिलेंगे, पलकें झुकाएंगे। इस पर भी यकीन हमको इस बात का तो है, हम कुछ ना कहें फिर भी आप जान जाएंगे।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। एहसासे मोहब्बत का इतना सा फसाना है, धड़कते दिल को उनकी निगाहों से बचाना है। कहना दें वो बात वही जो मेरे दिल में भी महफूज ऐसे रखी है जैसे कि खजाना है। आते ही रहते हैं हमने, कब इनकार किया है, मिलना तो तुमको था, हमने छोड़ा बहाना है।

देखकर खिले दिल की कलियां, महकने लगी हैं मोहब्बत की गलियां। उड़ती हूँ आसमान में मन की छलांग है, पंख तितलियों से उधार लिए भंवरों से शान है। खुशी से छानती फिरती हूँ दुनिया में, मोहब्बत का पैगाम सुनाती हूँ। अपने ही होठों से अब अपने दिल का राज बताती हूँ।

कह तो दिया था उस दिन तुम्हें, अब फिर से आज क्यों? देखो जी, अपनी मोहब्बत पर हमको है नाजियों, करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे, पर दिल की ये बात अब न होठों से कहेंगे। तुम लाख मना लो चाहे, मिन्नतें करो, जो कह दिया सो कह दिया, अब फिर ना।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन

0: और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।